2026 का अवसर में सीजी टीवी ने ल्याएको छ 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 सम्म को कैशबैक सजिलो 0% ईएमआई को सुविधा नागरिकता भए पुग्छ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप सीजी टीवी खेल संगे भरोसा संगे

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा

0: चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नाथुंगा पोखरा में भारतीय भूपो सैनिक का लागि स्वास्थ्य सेवा ECH स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ।
1: साथ ही ओपीडी सेवा आइतबार देखि शुक्रवार बिहान 9 बजे देखि साँझ 4 बजे सम्म। यो सेवा लिन ECHS कार्ड र रिफरल लिएर आउनु होला। पुनश 70 वर्ष माथिका भूपोहरूलाई रिफरल चाहिँदैन।
0: विस्तृत जानकारी का लागि चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नाथुंगा पोखरा फोन 0961 5594 5594 5582 7 78।

ए सतायो तिम्रै चिन्ताले छैन नि धारा तिन्ताले नखोजा मायामा विद्यारा धन चल्छ नि संसार मिलेर मन।

बनाई दो माया को दरबारा, पर्दे ही न संपत्ति घर बार, गर्नी छु माया अनगिनती, न छोड़ा साथ घर छु बिनती।

ए माया को ठुलो बाजार मा नबेच्नु दिल हजार मा पवित्र माया तिमीलाई नराख्नु दिल मा अरुलाई।

0: ना। आइए हम लोग आने में 6 बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनसादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिम बजार सैंजा

0: देगा। ओए नहीं तो सात एक के पाँच अपलो चार मेगा हर्ज को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोग लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।